मुख वसै नित नित होए खुआर। सुचे ना अखिए बहजे पिंडात होए, सुचे से नानका जिन मन वसया सोए पौड़ी तुरे।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचने तोर मोर मन मान जान कौ पूरन दीजा हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजा बचने तोर मोर मन मान जान कौ पूरन दीजा हौ बल बल जाओ रमैया कारण कारण कवन अबोल रहा बहुत जन्म बिछुड़े थे मादा

गए में सकत काल, नानक ते मुख उजले केते छुटे ना, जिन नाम ते आया गए में सकत काल, नानक ते मुख उजले केते छुटे ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

दीनन की प्रतपाल करे नित संत बार गणी मनगार पस पशु नग नाग नरा तप सर्व समय सबको प्रतिपारे।

सब कुछ तेरे बस तेरा कल्पला तेरे कर नंद वदाई तुद कर मान महत्ता ते जे अपना आप जर।

0: बिन बता
1: सर्व कला भरपूर दिसै जत कता नानक दासन दास तुद आगे बिन बता। राम कली महला तीजा आनंद एको अंकार

रंग प्रंग नेक न जपन करते बाजियां अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जीय तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा।

आख बखाणा जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तेन कुरबाणा हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुख वासी से मुकत भए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक क्रह हर पूजा जी तप तपह जपह बेअंता तेरे अनेक प्रह बहु सिमरत सास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावह मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वाड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सब नी त्याया जिसनों कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल जिसनु तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर वेखह जानह सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ै पैले निवासा पाणी पावक तिनह किया पंक जो मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबी आले मन एक न चेतस मूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई परापत मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै नकाम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरन कै
जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाउ, जप तप संयम।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होय चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमारे दुष्ट सब तुम काबहो, आप हाथ दय मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन कौ आज संघरिए। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन शत्रु हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाय ब्रह्मा बपतरा, काल पाय शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा।

हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद्ध कियो, काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, काट काट के पट पट की जानै, जाब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत ताब देह अपारा, जाब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन सृष्टि सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै,

जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप आपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरहो दुष्ट जिते उठवत उतपाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताकि काल निकट नह है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई एक बार जिन तुमै संभारा काल फास ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा।

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर

बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद ना सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां।

अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाउ नेत्री सत गुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाउ सत गुर सेती रतिया

जैसनो यह वाथ दी जग मह उत्तम काढ़ी है विरले के चिरंकाल मानस जन्म निर्मोल पाई सफल जन्म गुर चरण शरण कै लोचन अमोल गुर दरस अमोल दिखी श्रवण अमोल गुर बचन तरन कै नासका अमोल चरणार बिंद बासना पै रसना अमोल गुर मंत्र सिमरन कै हस्त अमोल गुर देव सेव को सफल

पांद जो लंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुर दर्शन देख निहाली सो कहो टल गुर सेवी है एहनिस सहज सुभाई दर्शन परसे आए गुरु कै जन्म मरण दुख जाई होवै सिफत खसम दी नूर अर सहु कुर सहु चटिया तो

सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दैसाहु जिस पास बैठिया सोहिय सावना दिसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दैसाहु जिस पास बैठिया सोहिय सावना दिसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। ऐसा नाम रतन निर्मोलको

रतन नश पैश पाया ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुण्य पदार्थ पाया अनेक जतन करे हृदय राखिया रतन नश पैश पाया हर गुण कहते कहन न जाई जैसे गूंगे की मिठाई रहाओ रसना रमत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई कहो भीखन दोए नैन संतोखे जह देखा तह सोई रसना रमत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई कहो भीखन दोए नैन संतोखे

हो केह लिख दुर्लभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अबिबिक राजे इंद्र संसर गृह आसन बिन हर भगत कहो केह लिख न बिचार्यो राजा राम को रास जेह रस अन रस बीसर जाही रहा जान अजान पे हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत यान अचरियत यन कश समझ न पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहु जिय दया कहियत यान अचरियत यन कश समझ न पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत

कोट सैन संग सोब कहत मज सोध जिसे दही पात खाए जियो। देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई किनकनी शब्द चनतकार खेर पाए जियो। काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही ये चाहे जियो। सत साच श्रीनिवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।

0: प्रगट सगल हर भवन मैं जन नानक गुर पार ब्रह्म।
1: दृष्ट धरत तम हरण दहन अग पाप प्रनाशन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रतिपालन आत्म रत संग रहन कहन अमृत काल ढालन सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लागै सो पै तरै।

अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाय हो सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावेसाह सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावेसाह

कैसे करी पुकारे दुख विसारण सेविया सदा सदा दाता रे साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता।

तो षडाए सोए सोण सोण मेरे कामणे पैर उतारा हो दयाल तेरा नाम तरा सद कुर्बान जाओ सर्वं सच्चा एक है दो